0: that the party must reverse its decision and sometimes and they do not want to compromise leader. Meanwhile, Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
1: पार्टी का हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
2: देखो, सारिया ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारिया की गल सुन ली है। देखो, हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सैकटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वह कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वह सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
0: And that was the interview, a short break. More news and updates on the other side. Stay with us on the broadcast.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ द न्यूज रूम टू द कोर ऑफ द स्टोरीज शेपिंग योर वर्ल्ड। Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
4: As India's mobility story is racing into a new future, it's in search for a new fuel map. Electric, ethanol, hydrogen, CNG, hybrid. What will power India next? India's sharpest mobility minds come together to decode the fuel mix that will define the road ahead. The NDTV Automate Fuel and Future Summit 2026 on 15 July only on NDTV Network.
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: Two nations, one defining vision, from critical semiconductors and high-speed rail to securing the vast waters of the Indo-Pacific, the blueprint of the world's most critical partnership is taking shape. Together, the visionary minds, rewriting global diplomacy, driving economic power and forging a massive manufacturing future. NDTV presents the Indo-Japan Strategic Dialogue.
9: Launch control, 0 to 100.
4: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
10: This car makes no sense, yet it makes every sense.
11: What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi.
4: Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
12: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली।
13: द थग यू सी इज शिंदे सेना कॉर्पोरेटर रमेश म्हात्रे ऑफ डोंबिवली, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे। आई हैव अ डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर यू टुनाइट। Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
14: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
15: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
16: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
15: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
16: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
15: इसका मतलब कि आगे जाके भी सर, अगर, अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
16: प्रशिक्षण हम हमारे
15: नहीं मांगेंगे
16: सर।
17: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
8: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.

0: आप हमारे साथ चलो।
1: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
2: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
3: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
4: And with that, we're slipping into a short break. Back with a whole lot more on the other side. Just stay with us.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला।

विषाणु, ये जुटानी है जो ये भी पाड़ती है, मैं भी पाड़ती हूँ, सभी पाड़ते हैं। अब बच्चे परेशान, चार पांच दिन काम पे गए, दो महीने हो गया, अभी 8 तारीख।

0: But the deeper the investigation went, the murkier it became. Families say they still haven't received complete medical records. In two of the deaths, post-mortem reports do not clearly state the cause of death. Key forensic reports are still awaited. Yet, one fact is undeniable. Something catastrophic happened. Women walked into government hospitals to bring new life into the world. Some never returned home. Weeks later, in some cases months, the investigations are still underway. The government has not yet given a definitive answer on what caused these tragedies or who will be held accountable. The question also arises whether something like this was always in the making. Five women walked into these government hospitals hoping to return home with their babies. None of them did. One of them was just 5 months pregnant. She needed stitches to save her pregnancy, but instead lost her life. Payal was the first to die. Hours after giving birth, her condition suddenly worsened. Then came Jyoti, then Pinky, then Priya. Five women, five families shattered. Families that blame doctors and a healthcare system they say failed them. Officials insist only three of the five deaths were linked by similar complications leading up to the renal failure stage, part of the same cluster. But the tragedy did not end there. Several other women suffered similar complications. They survived, but many are still undergoing repeated dialysis instead of caring for their newborns. No one seems to have a clear answer yet.
1: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पर लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 डॉक्टर आया वहाँ पर। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको। उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको, सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी। ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
2: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं। मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे? मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे?
3: हमारा तो इंसान गया है, इसमें दोषी कौन है? या कोई दवा कंपनी है, या कोई डॉक्टर्स हैं, या कोई सरकार है, या कोई इसको कंपनी से कोई पैसा खा के इसको चला रहे हैं सरकार, इसमें कौन है इसके जिम्मेदार? उसमें कोई कार्रवाई नहीं है। दोषी हमारा इंसान गए तो उसको दोषों से तो मर्डर है। मेरा मेरे दो दो जनों का मर्डर हुआ है मैम। मेरा
4: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
5: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी। शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी। शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही।
4: किडनी का
5: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था, मेरे पास गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम। तब से 2 महीने से इन्हीं के साथ हूँ। हर तीसरे दिन तो डायलिसिस होती है।
4: कितनी बार डायलिसिस हो चुकी है?
5: मैम 24-25 तो हो ही होंगे।
0: Sources have alleged that there were issues with monitoring the urine output of the new mothers after delivery, a critical parameter that they stated was not tracked adequately in some cases at the Kota Medical College Hospital. It was flagged that there was poor

0: tracking of blood pressure levels, ECG functions, hydration, liver and kidney function tests. Recommendations have also been made for better infection control mechanisms. The Emergency Operation Theatre, where six of the deliveries took place, has now been shut and is being renovated. The labour room had a seepage. However, officials say bacteriological cultures from the OT showed no signs of contamination. In the aftermath of the Kota maternal deaths, drug controller officials also found that some oxytocin vials contained water instead of the drug. However, NDTV has come to know that doctors and investigators now believe oxytocin is unlikely to have directly been the cause of these deaths. Attention has shifted to other possible factors for the deaths. Sources say reports on surgical items, IV sets and IV cannulas are still awaited, while tests on samples of the used antibiotics and several other medicines have come clear. Fresh samples of medicines linked to patients developing such symptoms as shivering have also been sent for analysis. Some findings have already been submitted to the Health Ministry, but sources say investigators increasingly believe the tragedy may have been multifactorial, involving a combination of patient condition, medical consumables, environmental factors, as well as a variety of other factors. As the probe continues, there is still no clear answer. Two doctors, including one contractual doctor, have been suspended.
1: उसके बाद से उसके बाद मतलब मेरे को यूरिन नहीं आया मतलब फिर 9 तारीख को फिर मुझे सवेरे यहाँ लेकर आए थे 7 बजे के आसपास फिर उसके बाद का फिर मुझे कुछ भी याद नहीं है मेरा पहले का भी बच्चा नॉर्मल नहीं है नहीं नहीं कुछ भी इशू नहीं था मेरा तो
2: डॉक्टर ने क्या बोला कैसे ये
1: वहाँ पर तो क्या नाम से ऐसा कुछ हुआ नहीं
2: बताया नहीं
1: है नहीं बताया नहीं है हमें नहीं बताया था
3: हाँ बीपी कम ज़्यादा हो जाती है बीपी बढ़ जाती है कभी कभी कम हो जाती है कभी शुगर बढ़ जाता है दिक्कत तो 5 तारीख से चल रही है तो अस्पताल में रहता हूँ दो महीने बच्चा बच्चे सारे यहीं है और 50,000 रुपये खर्च हो गए मेरे पास पैसे भी नहीं रहे अब तो कहाँ तक खर्च करेंगे बच्चा बच्चे के लिए और बच्ची की तबीयत खराब हो गई आज देखो मेरा तो उसमें दिमाग काम नहीं कर रहा अब क्या करूँ उस बच्ची को
4: और तो मैं स्टाफ से ये खुद बोल के आई थी मैं आपको मैं पार्टी दूंगी मेरे बेबी बॉय हुआ है ना ये तक बोल के आई थी पर आते ही फिर थोड़ी देर सोई है ना फिर उसके बाद मेरी यूरिन आना बंद हो गया उस टाइम तक तो आया था अच्छा सा तो उसके बाद यूरिन आना बंद हुआ फिर उसके बाद ही मेरी कंडीशन खराब हो गई
0: Sources said the new Kota Medical College Hospital handles nearly 100 deliveries a day. With such a heavy workload, they claim urine output, which ideally should be monitored every 2 hours, may not have been tracked consistently in every case.
5: Renal failure, there are more than 1,000 etiologies in renal failure. In these patients, the main reason for renal failure is hypotension, decrease in the blood pressure. 4 committees has examined and all the committees, they have clearly stated that everything was normally monitored.
0: Senior doctors say many of the women they treat have had multiple pregnancies, are anemic or arrive severely dehydrated. They say underlying health conditions coupled with poor nutrition and socioeconomic factors can increase the risk of serious complications during and after childbirth.
6: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो जोधपुर हो नागौर हो इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है उसको पहले से ही बीपी है प्रेग्नेंट है ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई ऑपरेशन हुआ तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है तो यह एक इररिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं
0: For families in Kota, the wait for answers has become as painful as the tragedy itself. They are still searching for accountability and for the truth behind the events that changed their lives

0: forever. Like thousands of others from the rural corners of India, they went to government hospitals in larger cities in search of safe and affordable institutional deliveries. Instead, that search ended in inconsolable loss.
1: In Rajasthan, every 1 lakh deliveries that take place, 1 lakh deliveries, be it caesarean, be it natural delivery, the death rate is less than 48 per 1 lakh. And in JK Lawn, there are 6,000 deliveries every year. The mortality rates in these deliveries is to the tune of 0.001%. One of the common factors we found is the heat wave, the heat. You say, how do you mean, how does it correlate with heat? Because dehydration takes place.
0: Bikaner, six mothers and stories of loss. Senior doctors at the PBM hospital in Bikaner insist that the six women do not represent a single cluster with a common cause. One of them was 6 months pregnant and had a history of hypertension. Another had diabetes. They say each patient had a different clinical history. It is claimed that they were mostly referral cases and there were pre-existing risk factors that ranged from severe pregnancy-induced hypertension and postpartum hemorrhage to diabetes and kidney disease. According to these doctors, acute kidney injury is a known complication that can arise from multiple conditions and that the blood cultures of all the patients had come negative. The PBM hospital's internal committee has concluded that no common denominator has emerged. Instead, doctors believe the complications may have been multifactorial, involving a combination of underlying illnesses like diabetes, severe anemia, dehydration and poor nutrition, as well as environmental factors such as extreme heat. Investigators say a final conclusion can only be drawn once all the pending reports are received.
2: Clear gaya jad bate main bharti kara di jad ke bachcho to huna lo jad mein theek raat bhar bin bharti ra ke subah 9 baje bhi ar patient ho ar patient ho jad babu yo jad mein sab khush hua baad mein kai main gayi me asar dakhne jad mein kyu kai yo ke bhai kaam apne shikcha dodi ke man sardi lage delivery hu 2-3 ghanta baad
3: delivery ke baad bachche se mili
2: thi ha bachche mili maau mili ke papa ne bulo jan mein papa ne phone kari main kaho ke jyada dikkat hogi jan mein kai ho kya ye khatam hone wali hai jan mein ek dam riya kai ho
3: normal delivery thi aapki
4: normal
3: delivery ke baad sab kuch normal tha
4: ha
3: fir aapko kahan leke gaye
4: patient room mein
3: wahan pe kya hua
4: wahan pata nahi gas karte tha pata nahi chala hua
5: 7 घंटे तक बिल्कुल नॉर्मल थी कोई दिक्कत नहीं थी डिलीवरी होने के बाद में भी फिर हमें बोला गया ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इनको ऑपरेशन में लेके जाना पड़ेगा उसके बाद में वहाँ से लेके आए बाहर निकाले फिर बोले वहाँ लेके जाओ ये फाइल लेके जाओ आप वहाँ डॉक्टर से हम दे रहे हैं वहाँ पर जाके दिखा के आओ फाइल दिखा के आए हम वहाँ पर तो वहाँ लेके गए तो उन्होंने बोला कि पहले तो वार्ड का बोला हमें वार्ड में लेके जाएंगे उन्होंने बोला नहीं हम सीधा आईसीयू में लेके जाएंगे इनको
6: क्या ऑपरेशन हाथ में मिस्टेक बन गई उल्टे पर सर रहा था उल्टे सदर बचपन काट दिन ऊपर लगा ऊपर लगा पूरे दिन उल्टे हुए रात रहा 10 बजे ले गए डॉक्टर में सेंटर डायलिसिस कराया रात 2 बजे पाछा ले
7: गणित को ने शुगर थे
8: शुगर है अच्छा और ये बस जब वो पेट से है होती है तभी शुगर है कि ऐसे भी शुगर है
7: शुगर है
8: थोड़ी बहुत शुगर है
7: फिर तबियत डिलीवरी हुई बाद हुई सही है डिलीवरी हुई ऑपरेशन डिलीवरी हुई सही 8 तारीख डिलीवरी हुई 21 तारीख बाद में खराब हालत
9: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं क्या अभी 26 दिन हो गए
1: द पेशेंट्स हु डाइड दे वर पेशेंट्स हुज फाइल रिपोर्ट्स यू सी वर कोमॉर्बिड यू नो लाइक इन जोधपुर जॉन्डिस हाई डायबिटीज High blood sugar, I mean your hypertension. AIIMS team came

0: did a full inspection, and they did tell us that you have to tighten your SOPs. In Bikaner, one lady had gone to Nagaur, then she got into complications and she got onto ventilator. From ventilator, she came down to Bikaner. She was even more sick. And so, again in Bikaner, she was put onto ventilator. So, all these ladies who came there were already in a critical state. They never came as normal deliveries.
1: For many in Rajasthan, including senior doctors, the events unfolding today bring back memories of 2011, when contaminated IV fluids at a government hospital in Jodhpur claimed the lives of 18 women. That tragedy exposed deep cracks in the public healthcare system and prompted promises of reform. 15 years later, another series of unexplained maternal complications is under investigation. Sources say investigators are also examining the IV fluids administered to these women, though the reports are still awaited. Whether history is repeating itself remains unclear. Until those answers come, one question continues to haunt Rajasthan. Were the lessons of 2011 ever truly learned?
2: वो इंफेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी.
3: अच्छा.
2: यूरिन नहीं आ रहा था.
3: अच्छा.
2: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गए, पीलिया वगैरह वो सब कुछ हुआ है, किडनी लीवर पे असर. ये तो कोई जा पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी नहीं आई होगी जिससे हो रहा है.
4: यहाँ आने के बाद इलाज अच्छा हुआ तो अब मेरा थोड़ा उम्मीद जागी है. बहुत परेशानी हुई हमको और हर चीज़ के लिए हमें वहाँ पे बहुत वेटिंग करना पड़ता था रिपोर्ट के जरिए, और हो सके तो दूसरे दिन मिलती शाम को भी. बहुत परेशानी थी. हाँ, बच्चा भी है, उनका भी बहुत परेशानी का है. अभी कौन उनकी देख रहे, माँ तो यहाँ पे है उनकी.
5: MDM मेडिकल ICU में रेफर करा दिया गया, और जो बाकी 6 पेशेंट हमारे यहाँ थे उनको एहतियात तौर पे, प्रिकॉशनरी तौर पे हायर एंटीबायोटिक्स पे ले लिया गया. 20 जून को जो ये सैंपल्स लिए थे OT के, गायनी OT के, वो सभी नॉर्मल हैं, और पेशेंट्स के भी 20 जून को सैंपल ले लिए गए थे. उसी दिन प्रॉम्प्टली सभी पेशेंट्स के वेजाइनल स्वैब, उनका ब्लड कल्चर के लिए ब्लड लिया था, यूरिन लिया था, वो रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई हैं.
6: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे. ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था. बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे.
7: 2 घंटे बाद तबीयत खराब हो गई.
8: 2 घंटे बाद क्या होने लगी?
7: ब्लीडिंग हो गई थी. दूसरे दिन फिर सांस की तकलीफ हो गई थी, ऑक्सीजन लगाया था,
8: ब्लड चढ़ा था.
7: रात को उसी दिन
9: वो ऑपरेशन किया था. उसके बाद तो सही बता रहे थे, फिर अचानक से वार्ड में पता नहीं क्या हुआ उनको. तो नॉर्मल कुछ हुआ था, BP डाउन हो गई थी वगैरह, और बाकी वाले को है जो किसी के ब्लीडिंग हो रही थी, फिर एक के होने शुरू हुए, दूसरे के हो गई, दूसरे के तीसरे के होगी.
10: टू नो वॉट कैन बी द पॉसिबल और एग्जैक्ट कॉज ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हैपनिंग्स इन दीज patients who has been clustered on that particular day, it is a little premature to say, because we have taken the samples of most of these drugs and surgical items and we have sent it for the evaluation. Usi cheez ko humko investigate karna hai ki is tarah ke happenings mein humko ye lagta hai ki koi cheez aisi cheez gayi hai jisko बहुत प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में गई है जिससे हमको, तो उसको टेस्ट करने के लिए जब तक हमारे पास में जब टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ जाती तो उसको हम नहीं कह सकते. पर हमें इन चीज़ों का जब तक रिपोर्ट नहीं आती तो हमें सस्पिशन रहता है.
0: कैन सी द मेडिकल रिकॉर्ड एंड द मेडिकल रिकॉर्ड इज ओनली हैंडेड ओवर वंस यू आर डिस्चार्ज्ड. सो व्हेन दे आर डिस्चार्ज्ड, होपफुली गॉड विलिंग दे विल बी डिस्चार्ज्ड, दे आर रिकवरिंग ऑलराइट, मेडिकल रिकॉर्ड्स विल बी गिवन. But if they want to access the medical record, there's nothing hidden about it. There is no secret about it, about the medical record. They can be shown immediately. AIIMS team came. They did a full inspection and they did tell us that you have to tighten your SOPs. They have told us certain SOP measures which Pan Rajasthan we are putting SOPs to improve. You know, the government is giving everything free. We are spending so many thousands of rupees each day, you know, trying to give them the best care and try to make them recovery. The government is doing their best for them.
3: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.

0: We're starting this edition with the breaking news that's coming in. We learned that there has been a fresh war of words that's erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party. This is after Kejriwal performed a puja. The BJP then trained guns on him and called him a Chunavi Hindu. That means an opportunist and a Hindu opportunist at times when it comes to his need. Now, the jibe at the ex-Delhi Chief Minister Kejriwal has been taken by the BJP. The BJP has also said that whenever elections are around the corner, it is Arvind Kejriwal's action to prove that he is a Chunavi Hindu. The BJP has also said that Arvind Kejriwal and his entire gang are trying to protect themselves as Hindus. Here is a reaction that's coming in from the BJP MLA Harish Khurana on say.
1: Arvind Kejriwal Chunavi Hindu hai. Aur ye hum pehli baar nahi bol rahe. Jab jab chunav aate hain, Arvind Kejriwal ke jo karam hote hain, wo proof kar dete hain ki wo Chunavi Hindu hai. Aaj wo badi-badi baatein kar rahe hain aur ek campaign chalane ki baat kar rahe hain ki hum log जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
0: My colleague Kanika is joining me live from the national capital. Kanika, this is a fresh war of words, of course, that's been erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party. Talk to us about the context that came in. Where were Arvind Kejriwal at this point in time where he was seen offering prayers and the reaction that came after from the BJP? Also tell us if the Aam Aadmi Party has reacted to those comments that have come in.
2: देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से राम मंदिर का चुनावी घोटाला सामने निकल के आया है और जांच हो रही है उसको लेकर जो है आम आदमी पार्टी जो है लगातार जो है वो बीजेपी पे हमलावर है. और इसी कड़ी में आज जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ओर से सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया जो कि रोहिणी में हुआ था, जहाँ पर अरविंद केजरीवाल, उनकी वाइफ सुनीता केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम जो आम आदमी पार्टी के वर्कर्स और वहाँ के जो लोकल रेसिडेंट थे वो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे. और इसी को लेकर जो है अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को चुनावी हिंदू के तौर पर बता रही है, क्योंकि जब जब देखा है कि जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल कई बार आपको मंदिरों में जाते हुए दिखाई देंगे, कई बार इस तरह के कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे. लेकिन इस बार जब सुंदरकांड का कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की ओर से किया जा रहा है तो बीजेपी लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी पे अटैकिंग मोड पे है और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को चुनावी हिंदू के तौर पर बताती हुई दिखाई दे रही है. साफ तौर पर बीजेपी, हरीश खुराना हो, तमाम नेता हो, वो लगातार ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इसीलिए इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि यूपी का चुनाव है और उससे पहले पंजाब का इलेक्शन है. कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू बनके काम कर रहे हैं. लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि लगातार वो राम भक्तों के मुद्दे को उठा रही है क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर में एक बड़ा घोटाला, एक बड़ा करप्शन हुआ है, उस मामले को उठाते हुए वो राम मंदिर के

0: इशू को रेज कर रही है और तमाम जो वोटर्स हैं उन तक इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में देखा जाए तो अब इस पूरे मामले को लेकर जो कॉन्ट्रडिक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो लोग हैं वो एलिगेशन भी लगा रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो लगातार जो है राम मंदिर के मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि वाकई राम मंदिर में करप्शन हुआ है और इसीलिए वो इस संदेश के साथ, इस मैसेज के साथ आगे बढ़ना चाहती है।
1: फिलहाल
0: पूरे मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा अनाउंसमेंट भी किया है।
1: बिल्कुल कानिका, जैसे आप बोल रही थी हमें कि दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन अ फॉल आउट ऑफ द राम टेम्पल थेफ्ट प्रोब, केजरीवाल गोइंग ऑल आउट देयर ऑफरिंग प्रेस, द बीजेपी कॉलिंग हिम अ चुनावी हिंदू, द पॉलिटिक्स इज कंटिन्यूइंग ओवर द सेम। And moving on to the other stories that we're tracking, this one is from Punjab, where the Congress versus Congress battle is intensifying. The rift in Punjab Congress has intensified after the Channi faction met yesterday. Now, the Channi faction met the Punjab Congress in charge, Bhupesh Baghel, demanding the removal of the current Punjab leader of opposition, Raja Waring. Now, Channi has demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were also present. This also came as a big show of strength that Channi was trying to put out there to send a message. Bhupesh Baghel had assured that the message would be conveyed to the party high command and has also told media that there were no one who's upset and that there is no infighting in the BJP Congress. However, the picture speaks for themselves. MP Randhawa has now said that the party must reverse its decision sometimes and that they do not want a compromised leader. Meanwhile, Raja Waring told the media that Randhawa will sort out other problems soon. Here are a couple of reactions coming in.
2: देखो सारियां ने अपनी गल कह ली है और उस गल दे विचों बघेल साहब ने सारियां दी गल सुन ली है। देखो हमेशा मैं भी एक स्टेट दे विच सेक्रेटरी हैगा, सानू सारे ही कहिंदे आ पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे हां कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
3: हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
4: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
5: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
6: नाम तो नहीं।
5: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तां असीं इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
1: Well, the Jammu and Kashmir politics has erupted into a fresh war of words. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that a National Conference MLA from Jammu was offered between ₹20 to ₹30 crore to defect. Omar claims that the alleged offer was also included a birth cabinet, a promise of restoring the Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied these allegations. BJP leader Ravinder Raina has dismissed the claims as baseless and misleading. He has also challenged Omar Abdullah to make any evidence that he has public. Here is what Omar Abdullah said, followed by the reactions that came in from the BJP.
7: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो, आपने जमातों को नहीं तोड़ा। हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से।
8: लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
9: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
10: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशन से नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
1: On to the other important stories that we are tracking, this one is about the Twisha death investigation that has now taken a significant turn. It is a major breakthrough that has now emerged in the Twisha death case, with the AIIMS submitting its final 11-page forensic report to the CBI. Now, the report is said to have strengthened a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt that was allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt that was recovered during the investigation. Let's now tell you about how the AIIMS report, that which has confirmed that the belt was used, is a crucial piece of evidence. Number one, the gym belt matches Twisha's injuries that she had on her neck. Twisha's skin tissue has been found on the belt. And remember, this is the same belt that the cops had not presented during the first part of the investigation, after which Twisha's parent had demanded a second autopsy to be taken place. This second autopsy now reveals that the belt linked with the neck injuries on Twisha's neck has been confirmed. The injury patterns also matches the ligature material. The AIIMS report, remember, does not rule out the foul play in the case, and the cause of death is still under probe. And well, that's all that we could pack in this edition, but don't go anywhere. There are more news and updates that are coming here right after a short break.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: We are over, Jimmy. Hey,
5: लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
6: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज

0: आते हुए बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
1: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
2: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे, आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
3: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after Channi faction met yesterday. The faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs, 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there's no infighting within the party. MP Randhawa has said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
4: ਦੇਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਘੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਆ। ਦੇਖੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
5: पार्टी के हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे तो उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
6: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं, राजा वड़िंग प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
7: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
8: नाम तो नहीं।
7: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी, सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
3: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। चीफ मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला हैज अलेज्ड दैट नेशनल कॉन्फ्रेंस एमएलए फ्रॉम जम्मू वाज ऑफर्ड बिटवीन 20-30 क्रोर्स टू डिफेक्ट। Omar claims that the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir's statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied the allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless, misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
9: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो। आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से।
10: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
11: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
12: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
3: Fifteen Indians were unfortunately killed after a speedboat capsized off Vietnam's Phu Quoc Island yesterday. The boat carrying 32 Indian tourists and four crew members overturned just 400 to 500 meters from the shore after reportedly encountering strong winds and rough sea conditions. Among those who died are 10 people from Tamil Nadu, 3 from Andhra and 2 from Kerala. Most of them were partners of the mobile company Lava Mobiles. In a statement, the company has said that their first priority is to support the family. Prime Minister Modi has expressed grief over the loss of lives, while the Indian Embassy in Vietnam continues to coordinate assistance for the survivors and the families of the victims.
13: My cousin, first cousin, Sheikh Abdullah, passed away in Vietnam in a tragic boat accident that happened in Phu Quoc Island. We did not get the news directly. It was informed via people who are already there. So they went for a trip with the company sponsorship, a Lava company sponsorship, and unfortunately he passed away. So this news we have not got directly. We got it from the sources from Vietnam and Phu Quoc. So it's a humble and request that Indian government and Tamil Nadu government expedite the process to get the body from Vietnam to India so that we can do our final ritual to our beloved cousin Sheikh Abdullah.
14: Vietnam boat accident, really very sad incident. More than 40 people went from India, mainly from Andhra, Telangana and Tamil Nadu. In that more people was in water because that boat was totally dipped into the water. In that incident, from Machilipatnam also, two people went there. Gelli Kishore and his wife, Gelli Jayasri. We got information that Gelli Jayasri was died in that incident and Gelli Kishore was in serious condition.
15: It is saddened to learn about the boat accident in Vietnam and 15 Indians killed, out of which two are Keralites, resident of Kottarakara. Their couple, Mr. Thomas and his wife Lena Thomas and visited the

0: ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।
5: Buy now, sell immediately. Hold it, boss.
6: Buy now, sell. Hold. Buy, sell immediately.
7: Confused? What to buy? What to sell? What to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: लोगों को, देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को, देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से।
1: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
2: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
3: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
4: The Delhi police has once again turned into a battle, once again a battle over faith and optics. And the Delhi politics yet again is brewing with allegations and counter-allegations between AAP and the BJP. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but the BJP has launched a sharp attack, calling it a political gimmick. The AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and they were meant to seek blessings and safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal has become a Chunavi Hindu and whenever elections approach, the move is aimed at projecting a pro-Hindu image, especially ahead of UP polls. Aam Aadmi Party has hit back, saying that the party has been organizing the Sundarkand part every Tuesday, insisted that the prayers have nothing to do with elections.
5: Kejriwal sahab राजनीतिक हिंदू हैं, आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला है इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है।
6: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे, जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
7: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
8: देखिए कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
9: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर होकर सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी हो ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
4: And a routine delivery parcel turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that a delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She further alleged that the accused flashed his private parts before leaving. And in a big NDTV impact, police have arrested the accused and further investigation is underway. The accused delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita, include allegations of sexual harassment, insulting a woman's dignity, and unlawfully entering a residence. The woman claimed that despite her repeated refusal, the agent entered the house on the pretext of using the washroom and the delivery agent forced his way inside. Moments later, after coming out, he allegedly exposed himself to her, leaving her in shock and dismay.
10: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको, मैं पक्के पुलिस स्टेशन जाऊंगी और खिलाफ में पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मैं कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके बात करनी। मैं बोली नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी। बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इतना फोर्स किया, मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करे थे, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया।
4: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in the Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to the CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during investigation. The report also states that the skin tissue matches with Twisha, which was detected on the belt, further reinforcing its evidentiary value. The findings also establish a possible link between the belt and the injuries. The AIIMS report does not rule out any foul play. The exact cause and the circumstances of her death remain under investigation. The investigation into Vietnam's deadly speedboat tragedy is now gathering pace. Vietnamese authorities have officially launched criminal proceedings into the incident. The Provincial Police Criminal Investigation Agency has registered a criminal case. The key question now is whether the captain ignored severe weather warnings before setting sail. Police is also questioning representatives of the boat, which were operating firm, the Ocean Pearl Island Company. They are checking whether the vessel underwent mandatory safety inspections before the departure. Even as Vietnam's probe moves forward, India is focused on bringing the victims home. The Indian Embassy in Hanoi has confirmed that the mortal remains of the 15 Indian nationals killed in the tragedy are being transported to Ho Chi Minh City. Once all official formalities are completed, the bodies will be flown back to India at the earliest.
11: The Indian consulate in Ho Chi Minh City has just confirmed that the mortal remains of the 15 Indian nationals who tragically lost their lives yesterday have officially arrived in Ho Chi Minh City from the island. consular officials state that upon the completion of local formalities in the city, the remains will be transported back to India. Other early

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, life mein scratches to aayenge. Gaadi ke scratches ko to Cosmo PPF sambhal lega. Aap apna dekh lo.
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: बाय नाउ, सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस,
7: बाय नाउ, सेल, होल्ड, होल्ड, बाय, सेल
5: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, मंडे टू फ्राइडे, 10:30 AM, ओनली ऑन NDTV प्रॉफिट।

0: where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: बाय नाउ सेल इमीडिएटली। होल्ड इट बॉस,
7: बाय नाउ सेल।
6: होल्ड होल्ड,
7: बाय
6: सेल इमीडिएटली।
8: कंफ्यूज्ड? What to buy, what to sell, what to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favourable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organising Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi afsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम चार पांच राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुज़ुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है।

0: अमित करने वाला है।
1: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
2: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega sanu sari kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
3: हाई कमान का फैसला है उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
4: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
5: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
6: नाम तो नहीं।
5: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं। और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
1: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said VCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
7: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India.

0: a block, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
1: Right, that may be his view, but where he should say, he is with the TVK in the alliance now, he is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaram's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
2: Let's listen in to what VCK chief Thol Thirumavalavan has said.
3: TVK என்ன சொல்றாங்க எங்க கொள்கை எதிர்ப்புன்றாங்க ஓகே டிஎம்கே என்ன சொல்றாங்க இவ்வளவு நாள நாங்க எதிர்த்துக்கிறோம் தொடர்ந்து எதிர்ப்புன்றாங்க இந்தியா பிளாக் என்ன சொல்றது அவங்களை எதிர்ப்பது தான் அரசியல் இல்லை அப்ப ஏன் இங்க ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கேன் என்ன தப்பு இருக்குது கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல் பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறாரு ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா
2: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside and moments later after coming out, he exposed himself to her.
4: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो क्या पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउ नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करना बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी अंदर शूज निकाल के फोर्स बोली वॉशरूम चले गया
2: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: meets the gifted content writer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: We are over, Jimmy.
2: Hey, life mein scratches to aayenge. गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
3: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
4: बाय नाउ सेल इमीडिएटली, होल्ड इट बॉस,
5: बाय नाउ सेल, होल्ड होल्ड, बाय सेल
3: इमीडिएटली। कंफ्यूज्ड? What to buy, what to sell, what to hold? Ask Profit with Mahima and Puneet, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on NDTV Profit.

0: head of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand Path every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, राजनीतिक हिंदू हैं, आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं। दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर होकर सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना

0: और निंदनीय बयान दिया है जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
1: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
2: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
3: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
4: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बरदस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
5: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
6: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
7: नाम तो नहीं।
6: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वह मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
2: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation.

0: The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
1: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing, if DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So, VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
2: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavalan's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalan has said.
3: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivada naala naan eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்துக்கிறேன். என்ன தப்பு இருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸும் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுகிறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்னா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
4: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो? क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है. मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी. बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मैं कुछ आना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना. मैं बोली नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी. बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी. मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ. अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना फोर्स किया नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करी थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया।
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi afsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में 4 साल बाद चुनाव है, वो कौन से

0: चुनाव की बात कर रहे हैं और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
1: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे, आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
2: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
3: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे जनाब, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को। देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को। देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से।
4: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
5: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
6: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
2: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
7: देखो सारे ने

0: సేమ్ అలయన్స్. సో హీ మే విష్ ఎనీథింగ్. తిరుమావలం, ఇట్ ఈస్ తిరుమావలం's వ్యూ. బట్ హౌ ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ వన్ విజయ్ ఈస్ అటాక్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ అగెన్స్ట్ డిఎంకే? వాట్ కెన్ వి డూ?
1: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavalavan has said.
2: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandhu edirkumraanga India block enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai appo yen inga ore enki varakoodadhu idhu dhaan Thirumavalavan eduthukkom idha kattu idhu Kerala oda Congress idhu saarigalum bayangaramaana modal பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுகிறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸுக்கும் சண்டை. ஆனால் இந்தியா பிளாக்கில் ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா?
1: Now talking about what has happened so far as far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
3: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो? क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है. मैं बोली नहीं भैया, मैं अलाउड नहीं करूंगी, सॉरी. बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंडियन मिक्स करके बात करना. मैं बोली नो सर, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, आई एम सॉरी. बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर, मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ. अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा, आई एम सॉरी, ट्राई टू अंडरस्टैंड. इतना फोर्स किया, मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया. मैं उसको मना नहीं करी, फोर्सफुली चले गया.
1: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Raisha Sehgal. What's that to me?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
7: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
8: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
6: I decode the global pulse, shaping the market mood.
7: I bring insights that help you make decisions that matter.
8: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
6: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
9: This is morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights

0: अल साहब, राजनीतिक हिंदू हैं। आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं। इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200 2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा। और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला, इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
1: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
2: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं। बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब होगा?
3: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं। दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में 4 साल बाद चुनाव है। वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं, तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
4: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है। लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
5: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है। तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए, लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में. तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है दिल्ली में, चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं हम तो, हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Raina has dismissed the claims as baseless and misleading.

0: and challenged Umar Abdullah to make any evidence public.
1: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
2: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
3: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
4: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Waring. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
6: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
7: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
8: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
9: नाम तो नहीं।
8: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर तुसी मेरे वाले

0: nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sanhita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
1: मैं नहीं छोडूंगी इसको मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट है कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मैं कुछ आना ही बहुत इमरजेंसी थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करना मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली उसके बाद मैं दरवाजे के बंद कर रही थी अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi avsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। चीफ मिनिस्टर ओमर

0: Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
1: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से.
2: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं. उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं. तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है. हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है. तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए, लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया.
3: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है. भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे.
4: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं. नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है. उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है.
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे.
6: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है. कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा. कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा.
7: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे?
8: शर्त रखी थी कि इस मीटिंग में
7: कोई कोई शर्त नहीं।

0: Kolkata. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
1: मैं नहीं छोडूंगी इसको, मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो, पैसे लेके पेमेंट कर रही थी मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी सॉरी, बहुत फोर्स करने लगे नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करनी, मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया, तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के पास खड़ी थी अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मैंने भी करी फोर्सफुली चले गया.
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था, तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है, दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं, तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल.

0: क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए, आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से?
1: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
2: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
3: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
4: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
5: Dekho saryan ne apni gal keh layi hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun layi hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
6: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता को बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
7: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
8: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
9: नाम तो नहीं।
8: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
9: दूजी
8: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिदा।

0: whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting up as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand Path every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi afsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand Path 2200-2400 jagah pe hoga. हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू है. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है. दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हम तो. हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं. उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं फिर उमर साहब बयान देते हैं. अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. ਦੇਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਪਰੀਏਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵੇ ਕਰਨਗੇ।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बर्दाश्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाई कमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी।
13: नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
14: दूजी
13: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे ने, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वह मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तो असी इन्ना चिर कट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्होंने उन्होंने बयान दिते। पर उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they fail to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing. If DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, he's that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaran's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavaran has said.
16: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naan eduthukkom thodandhu edirkumraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்துக்கிறேன். என்ன தப்பு இருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்ல கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரஸ் சண்டை. ஆனா இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flashed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flashed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence, and the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
17: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पार्सल लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूँगी, सॉरी। बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है, बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और एक दिन मिक्स करके।

बात करने में बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी मैं

0: ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi avsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 jagah pe hoga. हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा. और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं. बगुला भगत केजरीवाल, इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है. दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुज़ुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे. हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर होकर सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाये में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं. उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं. तब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है. हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है. तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए. लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया.
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदार

0: माना और निंदनीय बयान दिया है जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
1: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
2: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
3: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
4: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का बरदस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है तो निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बात साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
5: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
6: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
7: नाम तो नहीं।
6: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो?
7: दूजी
6: सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं। और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्होंने गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
2: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. Aaj unko Bhagwan Ram bhi yaad aa rahe hain. Inhone bhi afsarvadi bhagat bante hue Delhi mein Sundarkand part 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा। कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको। कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें। ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल। इस समय उनको फिर राम याद आया है।
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे। जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं। आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है।
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं, बीजेपी के आरोपों पर क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में, तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है। दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पर भेजा, तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पर कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस उत्तरकांड कराते थे। तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे। आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे। अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है, लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं।
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स। Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे। अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो। इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को? देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को? देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से?
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ek state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Tushar's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab, rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक सॉन्ग रच रहा है.
3: लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं. दिल्ली में तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है. दिल्ली में चार साल बाद चुनाव है, वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं, हम तो हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे, उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो, आप जमात को तोड़ते हुए थकते नहीं हो. इस मुल्क के किस कोने में आपने जमातों को नहीं तोड़ा? हम किस मुंह से, आप किस मुंह से कहोगे कि झूठ हम बोल रहे हैं? देखिए महाराष्ट्र का हाल, क्या किया आपने शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे साहब की पार्टियों को. देखिए वेस्ट बंगाल का हाल, क्या किया आपने ममता बनर्जी की पार्टी को. देखिए आम आदमी पार्टी हमारे हमसाय में पंजाब में, कितने एमपी लिए आपने वहां से.
7: उमर साहब उन लीडरों में से लीडर नहीं जो झूठ मारते हैं। उमर साहब जो बात कहते हैं पहले उसके पूरा फैक्ट्स तक जाते हैं, फिर उमर साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
8: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
9: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्जाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन, तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशंस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो जबरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
0: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
10: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ek state de vich secretary hega, sanu sari kehnde aa पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करदे कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारियां चीजां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
11: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव हस्त नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
12: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई शर्त नहीं है। नहीं, बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको दिखाना चाहिए कि किसकी नाराजगी
13: है। कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया है?
14: नाम तो नहीं।
13: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां ओ मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी जो उन्हां दी उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
0: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Twisha's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Twisha was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the Ames report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Twisha's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
14: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing if DMK is coming out of India bloc, that will cost them 22 MPs out of this. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
15: Right, that may be his view. But where he should say, he is with TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaran's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
0: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavaran has said.
16: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivada naala naanga eduthukodum thodandu edirpunraanga India bloc enna solrudhu avangala edirpadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்து வந்திருக்கிறேன். என்ன தப்பு இது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுகிறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார்ந்து. மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனால் இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்கார்றாங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசியல் நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னால் உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
0: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
17: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट हूँ कि किस टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो, क्या आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूँगी सॉरी, बहुत फोर्स करने लगे, नहीं मैम प्लीज प्लीज प्लीज मेरे को जाना है बहुत इमरजेंसी, थोड़ा करना और इंग्लिश मिक्स करके बात करना, मैं बोली नो सर मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी आई एम सॉरी, बहुत फोर्स किया तो बोली नहीं सर मैं अकेले रहती हूँ, मेरे घर में फैमिली भी नहीं है अभी, मैं आपको नहीं अलाउ करूंगी, मैं किसी को नहीं अलाउ करती हूँ, अब इनका सिचुएशन अच्छा नहीं चल रहा है, आई एम सॉरी ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना फोर्स किया मैं नहीं नहीं बोली, उसके बाद मैं दरवाजे के बंद करी थी, अंदर शूज निकाल के फोर्सफुली वॉशरूम चले गया, मैं उसको मना नहीं करी फोर्सफुली चले गया।
0: We'll continue tracking that story and much more on the other side of a quick break.

0: The Delhi politics has once again turned into a battle over faith and optics. Arvind Kejriwal today participated in a Sundarkand part in Delhi, but BJP has launched a sharp attack, calling the event a political gimmick. AAP said that the prayers were organized in keeping with the tradition and were meant to seek blessings and as safeguard religion. BJP has alleged that Kejriwal becomes Chunavi Hindu whenever elections approach, claiming that the move is aimed at protecting and projecting AAP as a Hindu favorable party ahead of the UP polls. AAP has hit back, saying party has been organizing Sundarkand part every Tuesday, insisting prayers have nothing to do with elections. Listen in to some reactions on the story.
1: Kejriwal sahab rajnitik Hindu hain. आज उनको भगवान राम भी याद आ रहे हैं. इन्होंने भी अवसरवादी भगत बनते हुए दिल्ली में सुंदरकांड पाठ 2200-2400 जगह पे होगा, हर महीने के पहले मंगलवार में होगा. कब कहा था ये? जब 2024 का चुनाव आने वाला था तो जनवरी 2024 में इन्होंने कहा, और ये कहा था कि हम लंबा चलाएंगे इसको. कितना लंबा चला इसका जवाब भी केजरीवाल साहब दे दें. ये केवल और केवल राजनीतिक हिंदू हैं, बगुला भगत केजरीवाल. इस समय उनको फिर राम याद आया है.
2: अरविंद केजरीवाल चुनावी हिंदू हैं, और ये हम पहली बार नहीं बोल रहे. जब जब चुनाव आते हैं, अरविंद केजरीवाल के जो कर्म होते हैं वो प्रूफ कर देते हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं. आज वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और एक कैंपेन चलाने की बात कर रहे हैं कि हम लोग जो राम मंदिर में चोरी हुई है उसको लेके हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे. ये सब दिखाता है कि चूंकि वहां उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव आ रहे हैं, इसलिए आज अरविंद केजरीवाल और उनका पूरा गैंग चुनावी हिंदू बनकर हिंदू बनने का एक स्वांग रच रहा है.
3: आप लोगों ने सुंदरकांड का ये जो आयोजन किया है राम मंदिर मुद्दे को उठाते हुए, बीजेपी लगातार बोल रही है कि आप लोग चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन पे काम करना शुरू कर देते हैं. बीजेपी के आरोपों पे क्या आपका जवाब हो?
4: देखिए, कोई चुनाव है ही नहीं दिल्ली में. तो अभी एक साल पहले चुनाव हुआ है दिल्ली में, चार साल बाद चुनाव है. वो कौन से चुनाव की बात कर रहे हैं? और अगर किसी और राज्यों की बात कर रहे हैं तो भारत में तो हर साल कम से कम 4-5 राज्यों में हर साल चुनाव होते हैं. और अरविंद केजरीवाल ने, मुझे लगता है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, लाखों बुजुर्गों को तीर्थयात्रा पे भेजा. तब कौन से चुनाव थे? क्या भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों के साथ खड़ी है? अगर चंदा चोरों के ऊपर कोई बात हो रही है, उनको फांसी की सज़ा मांगी जा रही है, उन पे कार्रवाई की मांग हो रही है, तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या वो चंदा चोरों के साथ खड़े हैं?
5: पहली बार नहीं करा रहे हैं हम तो, हर मंगलवार को पार्टी ऑफिस सुंदरकांड कराते थे. तो अब ये समय आ गया है कि ऐसे राक्षस जो सनातन धर्म का चादर का सनातनी बन रहे थे उससे हमारा धर्म बचे. आज हम ये पूजा अर्चना भी करेंगे. अब देखिए, अगर ये सनातनी होते तो उनको खुशी होती ना कि भाई सनातन धर्म और फैल रहा है, हर जगह प्रभु का नाम लिया जा रहा है. लेकिन नहीं, वो बिलबिला रहे हैं.
0: जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिक्स हैज इरप्टेड इनटू अ फ्रेश वॉर ऑफ वर्ड्स. Chief Minister Omar Abdullah has alleged that National Conference MLA from Jammu was offered between 20 to 30 crore to defect. Omar claims the alleged offer also included a cabinet berth and a promise of restoring Jammu and Kashmir's statehood if the MLA switched sides. The BJP has strongly denied allegations. BJP leader Ravinder Rena has dismissed the claims as baseless and misleading and challenged Omar Abdullah to make any evidence public.
6: आज ये बीजेपी वाले कहते हैं हम तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे. अरे ना, आपकी बात पे यकीन कौन करेगा? आप तो साजिश करते हुए थकते नहीं हो. आप जमात को तोड़ते हुए थकते